0: केटा के छ खबर?
1: ठिक छ।
0: अनि आराम छ नि?
1: हजुर आराम।
0: ए ल ल ल ल
1: अनि साथी तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ?
0: के कुरा?
1: पशुपति आउँदैछ नि।
0: पशुपति आउने रे?
1: हजुर।
0: ल म एकछिन फोन गर्छु है त।
1: हस् हस्।